0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Surya FM. Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihan ko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: का उड़ा नंबर पांच सलेरी को मध्य भाग में रहोक सोलखुम्बु आंखा उपचार केन्द्र सोलखुम्बु में आंखा संबंधी समस्या भएका संपूर्ण सेवा प्रदान कर सोलखुम्बु जिला जन्मिएर आंखा उपचार संबंधी दक्षता हासिल साथ ही जिला सामुदायिक आंखा केन्द्र फाप्रू में एक दशक भन्दा बढ़ी लामो समय काम अनुभव लिएका दिनेश राय द्वारा सोलखुम्बु आंखा उपचार केन्द्र संचालन अनुभवी दृष्टि विशेषज्ञ साथ ही ओए मार्फत सुरक्षित तरीका आंखा को उपचार कर दृष्टि एवं चश्मा जांच आंखा को नानी फोहर निकाली आंखा को आनो निकालने को साथ ही कंप्यूटर आंखा को जांच कर आंखा को जांच पड़ताल कंप्यूटर प्रविधि चश्मा फिटिंग चश्मा एवं सनग्लास खरीद में 10% छूट दी विद्यार्थी ओपीडी में 30% र चश्मा खरीद में 20% छूट वृद्ध अपांग तथा असहाय साथ ही विद्यार्थी ओपीडी चार्ज में 30% छूट को व्यवस्था शनिवार अन्य सार्वजनिक बिदा को दिन पनि बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म आंखा संबंधी संपूर्ण सेवा उपलब्ध होने
1: प्रोपाइटर दिनेश राई संपर्क नंबर 98 5 28 70 3 5 98 61 034 213
0: सोलखुम्बु आंखा उपचार केन्द्र सोलुदुर्कुमा नगरपालिका वडा नंबर 5 सलेरी सोलखुम्बु
2: उपभोक्ता अधिकार को संरक्षण गरौं गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ता को अधिकार को रक्षा गरौं कारोबार में बिल विशोक लिने र दिने गरौं कारोबारलाई पारदर्शी बनाऊ नाफा को उद्देश्य झूठा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना नदेऊ वस्तु सेवा को मूल्य मात्रा म्याच की नीति गुणस्तर एकिन करे मात्र खरीद बिक्री गरौं वस्तु व सेवा को प्रयोग कुनै हानि नोक्सानी भए स्थानीय प्रशासन में उजुरी गरौं वस्तु तथा सेवा को प्रयोग स्थिति पुगे क्षतिपूर्ति मागौ निष्पक्ष तथा तथ्यपूरक सूचना पाउने उपभोक्ता अधिकार को रक्षा गरौं भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना को कारण उपभोक्ता ठगी स्थानीय प्रशासन में उजुरी गरौं
3: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी सन्देश।

0: इंजीनियरिंग कॉलेज घोराही दांग को विद्यार्थी भर्ना संबंधी सूचना।
1: स्थापना को पहले बैच में इंजीनियरिंग कार्यक्रम तर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ पांचों बैच में गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल ग्रीनविच विश्वविद्यालय लंडन कॉलेज रीडर्स नेपाल द्वारा सम्मानित र नेपाल एजुकेशन अवार्ड जापान अस्ट्रेलिया तथा यूएई द्वारा पुरस्कृत लुम्बिनी प्रदेश के उत्कृष्ट इस कॉलेज में बीबीए बीसीए बीई कंप्यूटर र बीई सिविल कार्यक्रम में कहीं सीट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले तुरंत संपर्क गर्नुहोला।
0: संपर्क राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज घोराही दांग
1: फोन नंबर 082-562-601 98578-3590 98578-3484 तीन वर्ष डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और 18 महीने अमिन कार्यक्रम में कहीं सीट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले छिटो संपर्क गर्नुहोला।

0: world class entertainment को IPTV से विद्यमान करने देश हम इंटरनेट नेपाल को एक मात्र नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई स्पीक्स प्रभावी भाई को वाईफाई स्पीक्स बंदर हूँ संग उत्कृष्ट जुड़ान प्रदान करने देश हम इंटरनेट साथ ही इंटरनेट टीवी या अन्य सेवाओं सजिले व्यवस्थित करने एटा उपयोगी सेल्फ केयर ऐप माई डिश होम ऐप सुनोता मेरे कथा पैकिंग कर दूं तो सैमजी को विशेष लाइक कैंसर उपचार कराऊं ना इंडिया संगे ये रे दान करें हो
1: ए हुरा अनि सुनोता अब कैंसर को उपचार सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट भरतपुर में नहीं होता नहीं नेपाल में पहले पटक अत्याधुनिक बेरियन ट्यूबिंग भाई को 60 काउंस या हाइपर आर्क लगाए का अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग करी मस्तिष्क में बने को ट्यूमर चक्षु को कैंसर स्तन कैंसर घाटी तथा टाउको संबंधी कैंसर पेट तथा कॉलेजो संबंधी कैंसर पाठेघर को मुख गर्भाशय तथा मूत्राशय संबंधी कैंसर तथा अन्य कैंसर को उपचार हुन्छ कैंसर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएशन को माध्यम बाट पूर्ण रूप में निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ सरकारी अस्पताल की सेवा शुल्क में उपचार हुनुका साथ ही नेपाल सरकार बाट प्रदान गरिने कैंसर पीड़ित का लागि 1,00,000 सम्म को छूट को व्यवस्था पनि छ
0: यस्तो सुविधा रहेछ म अब कैंसर उपचार गराउन सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट में नै लिएर जान्छु
2: फोन 0754-93-33 4395-555

0: ओल्ड एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचित सोनी एफएम स्टूडियो टाइम
2: डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

0: 正确 Solo FM Studio Time
1: 7点 News for 3 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुर्गुंड नगर पालिका 5 सोलू कुंभू

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
1: उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
2: संचय सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
3: 6 PM साढ़े को 6 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुन नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू
4: Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
5: Where do we begin?
4: With international news you can trust, BBC News.
5: Journeys into the heart of global events.
4: And voices from around the globe.
6: The whole region is in the grip of a severe water crisis. And I am here to find out why.
4: The BBC World Service, right here on Zeno.fm and the Zeno Radio app.

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sanche Sulu FM Studio Time.
4: It's 7 p.m. Start ko 7 baje.
5: Time check ko saathma. New Star Digital Color Lab tatha Dwaramai Offset Press. Solu Dutku Nagar Palika 5 Solu Khumbu.
3: Sanche.